जोजो लपा नेपाल भाषा या ज्याजो नेपाल नेतृत्व सुनादेपी सबकल सित दुनगलन से लसकुसा जी रश्मिला प्रजापति थो नेपाल सम्बत झिंच सव पी खुद तछला धो पारु थनी निसे नुगो ला सुरुजला अलि निलामी भाजु मेज पी ज्याजो नेपाल नाप दुख छिंगेना सुनादिल ज्याजो नेपाल स नेवा सुसम बुखत तेगु अलि नेवा मेते हाकी गोजी पछि बिसन सुगु खजल यको यको बुखत दु सुबुख दुले रगा धाबले नगरपालिका यु बुख दु अलि अथे हे विजय रत्न असम बडे बेको या त हंगो बुखदु अलि अथे रञ्जना लिपि सिनेगु बुखदु यो को बुखदु ला जी छौ ढुंका मेगु बुखदते खला आथ बुख नका वई न गे जुया छुनी रासा गोबे उले तथा रंगो ज्याखै बुख जा छि सँग मखना छ नि मला तर चिसे रंगो ज्याखै चाहिँ बुख होइ छ नि व एक्सेस यो ख वा पत्र पत्रिका सिकपि सँग ज्याजो या ढुंका चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति छ ह महा मला उखेन यो को ख पाई एजा छु न ज्याजो छि या न दियासा थोंगनेल अफ छि जस्तै अनलाइन मिडिया स्ट्रीम आला मखला अनलाइन मिडिया सोया सपोज फर एग्जांपल छि जे नेवा अनलाइन न्यूज दे आदु ने नेवा अनलाइन पत्रिका अन छि सोया दिल दासा द प्ले को पाके स्वापु धागो था दे मला स्वापु धाव था से वना छि क्लिक कैन दिल दासा अन कांटेक्ट या अन ईमेल अन नंबर त दै नि अन चाहिँ छि वो ईमेल आईडी ले छि जे थग बुख छोइ दिल अले वेक अप इंडस को फोन न यान दिल सा अले छि जे न्यूज बाला को कभर छि खला वो चाहिँ अन फोन नम्बर न ब्या तगो दु अले अन ईमेल आईडी न दु एजा अठेना चाहिँ कबडी छ कुत यान दिस अले सिक बिरेको न्यूज सबा फोटो न छेमा न्यूज त चाहिँ बाला को कभर जे छि छुके छुया दिस छुया दिउ ख अन चाहिँ या माला कि मक्सा छिके गुलि न ईमेल आईडी तो अन चाहिँ छुया दि माला छ त यो को ज्या ख त जुया छ नि तर वो ज्या ख यो पटी बुख चाहिँ कम हे जक कभर जे ज्या जसा दक्ले नापाङ गो मेते मेढुङ्का चाहिँ थोङ्यागो बुख त छसी कथ Take a seat.

Ipatukaknolas, Kusajazo Nepal, Sanipali, Jazo, Ching and Atunadilla, Jazo Sa Ye Mahanogar Palikaya, Chagu Bukatina, Ye Mahanogar, Tuatuale, Sankipa, Mozab, Yagujugudu. ये महानगर पालिका थोएवेगो असार पांच गते निसे 26 गते तक शुक्रवार व शनिवार सार्वजनिक था पार्क दवली व चुकचुके त्वा त्वाले सकिपा महोत्सव यागु जुगुदो महानगर छगो पत्रकार सम्मेलन यासे महोत्सव छि सार्वजनिक यागुदो महानगरिया कथ महोत्सव या उलेजिया असार पांच गते खुला मञ्चे व 6 गते व्हीकल फ्री असन क्षेत्रे संचालन यागु जुगुदो नेपाली चलचित्र क्षेत्र विकास व विस्तार या त योगदान बिगु व नात्मक उद्योग या तो समुदाय नाप स्वयं उद्देश्य ठुकु जाजो या तेना गुदा का महानगर धागु दो महोत्सव अंतर्गत लघु चलचित्र नापों चलचित्र प्रदर्शन कला व रचनात्मक उद्योग संबंधी संवाद सांस्कृतिक नापों सृजनात्मक जाजोले स्थानीय नशा बोझा या तेंगु खा चलचित्र प्रदर्शन नीति एलडी स्क्रीन साउंड सिस्टम नापों क्यूरेटर या व्यवस्था महानगरीय संपदाली से पर्यटन विभाग व स्थानीय युवा तेसा व्यवस्थापन यायगु जुगुदु महानगर वैगुदी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नाप स्वाना थुगु ज्याझो या तेंगु ख महानगरीय प्रवक्ता नवीन मानन्धर पृथ्वीगु विज्ञप्ति त्वा त्वाले फिल्म महोत्सव महानगरियागु रचनात्मक सहर यात्रे प्रारम्भिक पलाजीगु दासे थुकी या त तालाकित संचार माध्यम चलचित्र कमी नाप सरकार वाला तेगु गुहालीजीगु भल्सा बेकल नेतना दिगु दु महानगरपालिका आठो विशेषणा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म दिन या लस्ता चाहिँ सनाया थे बुझा खन्जुल आ अन चाहिँ आज सुबे नेपाली व नेवा भाय गुप्री संकिपा खन्युल सायद प्रदर्शन जुगु छ स्पेसिफाई यन्त गु मदु या छ 800 चाहिँ नगु एक्सपीरियन्स जुगु ल तापन संकिपा त एना क्यो अन विशेषणा चाहिँ इन्द्रजात्रा इले जनबाले हे चोपी अन जनबाले मछिन्द्र बहाल क्लब दया दुमखला आवे कपी प्लस अले थे मिहालामी पवित्र कसा जुपी वेकन गु क्लब हे पिक अप स चाहिँ अन मिले ज्या मेगु न युसु गु क्लब क्लब मिले जुया चाहिँ अन विभिन्न संकिपा त किनि भन आदिको प्रश्न जिफो कुनै व्यवस्था चाहिँ असार महिना बजेट सिरेके त यागु खला रखान आसे जिफो तर अन आज अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सव नाप स्वागत गर्न खोजुल तर आयु इले आठो वाई वाई इले चाहिँ आउ सायद छैन छुएको कभर तया कि मसँग एलडी स्क्रिन एला प्रब्लम जी एन आई किनको व्यवस्था चाहिँ यागु दुजी स्वे गेजी खा आथौ नक्तिनि 2 गते जुल असारिया 5 गते दाबले थु शुक्रबार 6 गते दै शनिबार शनिबार सिठिन खन सिठिन खय बारे न छुछु खला मास्ति होला थुक्सि सिठिन खस बतल लाली पाला त मलाई बिसे अन लगा दुजी आसे असारे ला होला तर सिठिन ख दगा दै छै झिनेवा तेगु थगु हे व बाताउर दिवस मतलब सिठिन ख भले चाहिँ लया गुलिन अन प्राकृतिक मुहान त दु सफाईगु दि अदगा दै गु तुन्थि अले लोहिति बुगाजा अयु चाहिँ सफाईगु दि तर आ थो विशेषणा सहरी क्षेत्र स्वयं खसा थो थो लोहिति जेना छ लोहिति दल्ला लोहिति र खस नारा तर लोहिति लोहिति त न तस्को हे कम ज्याव नुगला लोहिति स्रोते मरे नुगला आ दक्षा चाहिँ कोइ ठंग गाम या व प्लास्टर या नाम खला धलानी ना एना छेन्दिने बलेला स्रोत दक सुना वन नुगला अले आ तुन्थि हाल न अथे ख तुन्थि न ल अबे उ तस्को मजि नुगला ए न सिम्बलाइज्ड रूप हे जो सा छु छु तुन्थि त दु ओ तुन्थि सफायाको ज्याजी गन गन तुन्थि व प्र्याक्टिकल ज्यान यान छ मधु लापरिसा एकदमै थो यी येलो महानगरपालिका शिवे पचतापाको जस्तै येले न हामी मेगु न न वरा त दुनी पचतापा त पनि अवस्थित अनजुल अले खोप जुल थिमी जुल मला अनयुक्ति थासे भन्नु बले चाहिँ व तुन्थि सफा यान त चाहिँ व लुज एस वे खनि होला अले उले सक मको सिति नगर आबे त सक सक व नेउदि अले त आठके सिग्निफिकेन्स यु खत छ चाहिँ आ व सिति नगर खुनु यो पूजा यो सांस्कृतिक पक्ष त दुवे जुल मेन चाहिँ व नेउ खला आथौ गने व बारे महिना नेउ दु एज अ ओके यु पति चाहिँ पति चाहिँ महत्व कम जुला थे जु मतलब बारे महिना छिति बा दुसा बा छि चाहिँ अनु थासु छ न्याबले न नेउ खन दिसा नापा बलेला वोने त कि सिट नका बेमा कि भेबेमा सायद कि बुदिबेमा जे मतलब 10 का नापा सब मथुरा से हामी जुन कना दिदा नापा खे ने त खे छगलो खे ने त चाहिँ बुदिबेमा मेबले साथी खे ने वे मोर वसु दे खे मोर का खे त सको मजल आ आथे व व्यावसायिक रुप खालै मखनि साउ बलेला अले
खेने मास्तु वे कया प्यासुनी हो बुद्धि वाले से बुद्धि जो मत समय से तो बियां छगो अज मैं भी इंदला बागा बागा ताना बियां खला अब ले संतान छम जग जी मुझे निम्स समय प्यों मन्या मो जी मत कम दे या घना घनो छे अल अज सॉइंग तो परिवार जी ले ताबा या मस्त मा बो या मस्त अज काका या मस्त भागवा दे सुनी नी अल वो ले हाँ जाए सु जन्मदिन जुल वो जन्मदिन जो मत आए तो जाए छगो खेने की मो मैं भी इंदसे बागा बागा नगी आतो तस्को ना पाई खोज लो मथुरा सामी हुए गला यू कोई दौड़े रूंगला लगभग से दो यू हरारी दो जी साय दुए का जैसा अजागु निवास समाज हो अली आज है एकदम ऐसी कमर्शियलाइज्ड निवास समाज है दुम खला आज देवास को दूसरा चीज नहीं गुना परिकार न्याओ इले ना नेफ ऐसा सिटी ना खा चीगो विशिष्ट सगुन ना खा अली थो ना खले सही मेन रूपा सही नई गुड़ाई गुसे वो ये जुला ऐसे आज सिटी ना खा या चिक बिंदा बिंदु ना बिसे ज्यादा सजी छपुमे स्वेटे ना

आफ्नो लसुक ज्याजो नेपाली ज्याजो छिङ्गेना छुना दिल ज्याजो सा आफ्नो मेघ बुखते आज विजय रत्न असम बरे नाप स्वागत बुख खलाजी वंगु वाले न छुगु बुख तयागु ख विजय रत्न असम बरे गुहाली पुसल सुबा दिशा ज्याजो याई गु रका बुख तयागु अले वहे ज्याजो सा विजय रत्न असम बरे या त हंगु दु विजय रत्न असम बरे गुहाली पुसल वरिष्ठ सिने पत्रकार लिसे निर्देशक भाषा सेवी विजय रत्न असम बरे या त वे क या भी उसा या कामना या से तजिक हंगुदु शनिबार नेपाल भाषा एकेडेमी या चान्सलर लिसे नेवा निलुवा मल्लके सुन्दरिया मुपहा सुई जुगु उगु ज्याजोले गुहाली पुसया कजी पवित्र वज्राचार्य विजय रत्न नेपाल भाषा खेले छम मदे क मगा म व्यक्ति जुगुनी जुगु विचा पुंगु से वे क या भी उसा या कामना या नदिगु ख किडनी लुए या हुनी म भया छम वे क विजय रत्न असम्बरे या त आर्थिक गुहाली मेगु नीति विजय रत्न असम्बरे गुहाली पुस निसना गुहाली मुङ्गुको खसा थथे मुङ्गुको 2,78,700 टका दा विजय रत्न असम्बरे या त ल लागु ख अति हे विजय रत्न असम्बरे या त आर्थिक गुहाली यापी सकलसित सुब्यान देसागु ख गुहाली पुस या दुज सुरज वीर बज्राचार्य यहाँका दिगु उगु ज्याजोले पवित्र खसा

साउथ कोरियन वान XIको खरिदार 10 रुपियाँ 2 पैसा, बिक्री दर 10 रुपियाँ 6 पैसा। स्विडिस क्रोनर 1 को खरिदार 16 रुपियाँ 8 पैसा, बिक्री दर 16 रुपियाँ 15 पैसा। डेनिस क्रोनर 1 को खरिदार 23 रुपियाँ 45 पैसा, बिक्री दर 23 रुपियाँ 55 पैसा। हङकङ डलर 1 को खरिदार 19 रुपियाँ 28 पैसा, बिक्री दर 19 रुपियाँ 35 पैसा। कुवैती डिनार 1 को खरिदार 491 रुपियाँ 94 पैसा, बिक्री दर 493 रुपियाँ 89 पैसा। बहरेन डिनार 1 को खरिदार 400 रुपियाँ 48 पैसा, बिक्री दर 402 रुपियाँ 7 पैसा। र अन्तमा ओमानी रियाल 1 को खरिदार 392 रुपियाँ 23 पैसा, बिक्री दर 393 रुपियाँ 79 पैसा। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो आजको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको खुला बजार वैदेशिक विनिमय दर। अब हामी गीत सुन्छौ सागर संसार राईको के भयो सानो।